0: रेडियो 786 100.4 एफएम स्टीरियो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
2: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
1: कपड़ा?

जी हाँ, ये साबरी ब्रदर्स नहीं थे, माफी चाहती हूँ थोड़ी सी गलतियों की। फोल्डर में साबरी ब्रदर्स नाम लिखा हुआ था तो माजरत है, और इंसान है, थोड़ी गलती हो गई है, माफी चाहती हूँ। तो साबरी ब्रदर्स की यहाँ बात करेंगे तो 1970s कस्कर साहब ने साबरी ब्रदर्स को केप टाउन लाए थे, और इनके कलाम, साबरी ब्रदर्स के कलाम आज भी दिल को छू लेते हैं। तो ये अगला कलाम फिर से हम डेडिकेट कर रहे हैं इब्राहिम कास्कर और सकीना कास्कर के लिए, ताजदार-ए-हरम, साबरी ब्रदर्स की आवाज़ में।

जी इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा. और अगला कलाम है मालिक तेरी दुनिया में.

0: बना देना।
1: जी हाँ, ये खूबसूरत मनकबत अजीज नाजा की आवाज में हमने डेडिकेट किया जमाल साहब के लिए। रात के तकरीबन 9:40 हो रहे जा रहे हैं और प्रोग्राम के समाप्ति का वक्त हो गया है। शब्बीर साहब ने हाथ उठा दिया, कह रहे वो थक गए अब तो, प्रोग्राम यही हम समाप्त कर रहे हैं। आप भूलिएगा नहीं, नेक्स्ट जनरेशन एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड फेस्टिवल 26 एन इलेक्ट्रिफाइंग एक्सपीरियंस, सैटरडे 11 July 2026 CTICC मेन ऑडिटोरियम में शाम के ठीक 7:30 आप सुनेंगे सारे गमा के सुपरस्टार रफ़ी हबीब, सूफी मास्टर अनवर और मुंबई रॉक स्टार रिमो घोष और सेंसेशनल से और बैक्ड बाय कमर हुसैन और लेड बाय अविश रामकिशन जो बैंड को लीड करेंगे। तो ज़रूर आप सपोर्ट कीजिए इसको। सैटरडे 11 July 2026 CTICC मेन ऑडिटोरियम 7:30 सारे गमा सुपरस्टार रफ़ी हबीब, सूफी मास्टर अनवर, मुंबई रॉक स्टार रिमो घोष और सेंसेशनल शे बैक्ड बाय कमर हुसैन शो बैंड एंड लेड बाय अविश रामकिशन। अगर आपको टिकट्स की इंक्वायरी करनी हो तो आप अताउल्ला साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 08290678 पर, अताउल्ला साहब 08290678 पर। इसी पैगाम के साथ मैं सुफिया दलवी आपसे रुखसत चाहती हूँ। इसके बाद आप सुनेंगे ख्वाजा की अदालत जमा साहब के लिए जानी बाबू की आवाज़ में, अली के साथ जहरा की शादी अमजद साबरी की आवाज़ में, भूल गई मुझे जमाना और फिर सासों की माला एक नए अंदाज में होगा, या हुसैन और आरजू बानू की आवाज़ में सलामी होगी इंशाल्लाह। जिंदगी बाकी रही, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह, शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह खैर।